सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप सत्संग जीओ गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखने की एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहपन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान किया, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान किया है, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसे भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा, अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी एक तो आरंभ होती है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्मवाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नु समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
नहीं ते सदा ही नापाक गंदगी दी ढेर गलाजत नाल भरे आया मैला। महाराज शुद्धता मनदे ही नहीं, एक नू समझे बिना कोई शुद्ध नहीं, एक नाल जुड़े बिना कोई पवित्र नहीं। कोई बहुत वड्डा दानी है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, ते खुद भी अपवित्र, एदे दान विच भी अपवित्रता होवेगी, एदे दान विच भी हंकार दी बू होवेगी। कोई बहुत वड्डी सेवा कर रहा है, एक दी समझ नहीं, एक नाल जुड़िया नहीं, इस सेवा दे च भी हंकार ने जन्म लेना है, निरंकार ने नहीं। कोई जप कर रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, होर तरह तरह की सेवा दे जुटे होया है, ना एक दी समझ, ना एक नाल जुड़े है। तो मैं अर्ज करा इना सारे धार्मिक कर्मा दे चों हंकार ही प्रगट होवेगा, निरंकार नहीं। और जिस जिस कर्म तो हंकार प्रगट होवे उस कर्म नु निर्मल नहीं आख्या जा सकता, तो मलिन है, वो तो मैला है। जो खुद मैला है उदा दान भी मैला, जो खुद मैला है उदी सेवा भी मैली, और जो खुद मैला है यकीन जानो उसका गुरुद्वारे बैठना भी मैला है। क्योंकि जितने चिर तक खुद शुद्ध नहीं होवेगा इसका कोई कर्म शुद्ध नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता किवें शुद्ध होवेगा, यह किवें पाक होवेगा, यह किस तरह पवित्र होवेगा। तो फैसला धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, एक वस्त बूझे तो होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एकाग्रता बख्शने, एक नू समझे, एक नल जुड़े, एक नू जाने ते तू पाक है, पवित्र है, शुद्ध है। जे एक नू तू समझिया नहीं, एक नू तू जानिया नहीं, एक नाल तू जुड़िया नहीं, तो बिन बूझे तू सदा ना पाक। मैं फिर अर्ज करा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का, पहला बोल, पहला अक्षर, पहला शब्द एक। दुनिया के वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जिन्हों के बोल आरंभ आते ने एक तो, बाणी आरंभ आती है एक तो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तवज्जा, ध्यान बख्शना, इति पहली हो गई। वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। दरअसल संसार दे तल ते वो अनेक है, और खुद वो अपने आप दे निरंकार दे तल ते एक है। आकार दे तल ते अनेक है, निराकार दे तल ते एक है। वो सरगुण दे तल ते अनेक है, वो निर्गुण दे तल ते एक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए इनू पढ़न वाले, सुनन वाले, गाण वाले बहुत आउणगे, पर सतगुरु का फैसला है बाणी बिरलो विचार सी। कोई विरला विचारेगा और विरला ही अपने सोच मंडल दे चले आवेगा। जद असी कहने फलाना मनुख बदल गया, तो की बदल गया, हाथ बदल गए, पैर बदल गए, मुंह मत्था बदल गया, कुछ भी नहीं बदलिया, विचार बदल गया, सोचनी बदल गई है, चितवनी बदल गई है। विचार दे बदलदिया मनुख का संसार बदल जाता है, सोचनी दे बदलदिया मनुख का आचरण बदल जाता है, चिंतन दे बदलदिया मनुख का सब कुछ बदल जाता है, सारे का सारा व्यवहार बदल जाता है विचार दे बदलदिया। और किधरे बहुगिणती दे मनुखा दे विचार बदल जान, इसे नू कहिंदे ने युग बदल गया, समा बदल गया, युग बदल गया। युग दी तब्दीली मनुख दे विचारां दी तब्दीली है, और मनुख दे विचारां दी तब्दीली युग दी तब्दीली है। बहुगिणती दे मनुखी विचार बदल जान तो सारे दा सारा आचार बदल जांदा है, युग बदल जांदा है।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दिए, विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दिए। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए, ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुछ उदे कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। इस शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुछ उदे जा। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, इस सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जांच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जांच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेंट करने की जांच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेंट करता है, गुरु अपने विचार इस नू दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिर इन्हां चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहिंदे ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, इस ऊपर ले रखियो गुमान है कि तेनु हड्डियां दा माण है, तेनु मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। जैसे असी वख वख रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नू नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्मे ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानू मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वख वख दे दिता। किसे नू गोरा,

यदि दृष्टि काल तक पहुंच गई है वो काल दे वस नहीं पाएगा, अकाल दिच लीन हो जाएगा। उसे नो कह सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत दली संपूर्ण थी आराम। इतने विचारा प्रवान करनिया, बाकी कल गालबन 15 तारीख तक दास ने थोड़े चरण पर सुने ने गिला है। बहुत सारिया संगतान लवैत की टाइम थोड़ा है, पर 400 साल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का महिमा भरा है। ये पुरब सारी दुनिया च मनाया जा रहा है। दो दो चार चार दिन दास ने वख वख मुल्कां च वख वख शहरां च दिते हुए ने, तो इस तरह की कोई भज दौड़ है। इतनी सेवा 15 तारीख तक थोड़े चरण परसांगे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपने इस ज्ञान दे सागर दे छां खजाने दे छां जो जो दात बख्शिश करनगे तुझ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखण दी निवाणी कोशिश करदा रवांगा।

विचार आप दीदी समक्ष भेंट करिए पेशतर फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हर कौम दा ते हर अवतारी पुरुष दा कुछ इतिहास होंदा है, कुछ उसके सिद्धांत होंदे ने। सिद्धांत इतिहास किसी भी अवतारी पुरुष नूं समझना होवे, विद्वान कहिंदे ने पहलू तीन होंदे ने। प्रथम उसदे बोल की ने, जगत दे प्रति उसका संदेश उपदेश की है। दूसरा उसने कीता की है, उसदे कर्म की ने। तीसरा उसदे बोलां नाल उसदे कीते होए नाल होया की है, अंजाम की होया। किसी भी अवतारी पुरुष नूं वेखणे पहलू तीन ने, तीन उहदे बोल की ने। सियाणे ऐसा कहिंदे 90% मनुख अपने बोलां राही प्रगट हुंदा है, 10% उहदी बाकी क्रियावां तों अंदाजा लाणा पैंदा है। वेखदिआं कुछ भी नहीं पता चलदा इह मनुख की है। किसी नूं भी वेखना वेखण नाल किसी भी मनुख दे प्रति मनुख कोई अंदाजा नहीं ला सकदा। यह मूर्ख है, सियाणा है, धार्मिक है, अधार्मिक है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है, शांतमयी है, क्रोधी है, दूरदृष्ट है या जल्दबाज है, वेख के नहीं पता चलता। मनुख दे बोल सब कुछ दस देंदे ने। मनुख दी गुफ्तगु तरजे बयानी 5-10 दिन उसकी संगत करी उसके बोलां विच मनुख दा सारे दा सारा आपा प्रगट हो जांदा है। इनू ईरानी सूफी संत सादी इंज कहिंदे ने, ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। जितने चिर तक मनुख बोले ना उहदे गुण औगणा दा पता नहीं चलदा। ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता बाशद ऐबो हुनर निहुफ्ता बाशद। बोलदे ही पता चलदा बंदा धार्मिक है ये अधार्मिक है, शांतमयी है, क्रोधी है, ये जल्दबाज है, ये धीरजवान है, ये दूरदृष्ट है, ये तंग नजर है, ये निर्वैर जज्बा रखता है, ये बड़ी भारी दुश्मनी रखता है। उदे बोल दसन ये फराग दिल है, ये तंग दिल है। मनुख दा सारे दा सारा जड़ा सुभाव है 90% उदे बोलां राही प्रगट हुंदा है। भारत विच एक ज्ञान दा बहुत वड्डा ग्रंथ है, उनू सार किताबली कहिंदे ने। गालबन कोई 4-4.5 हजार साल पुराना लिखा है, उदा हिंदी रूपांतरित है। बोलत ही पहचानी है साध असाध को थाट, अंतर की करनी सबे निकसे बुख की बाट। 5-10 दिन बंदे की संगत करिए गुफ्तगु देच उसका अंतशकरण सारे दा सारा बार आ जाता है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दा वाक, हमो मर्द बायत शवत सुखनवर न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। मनुख दी महानता उसदे सुखन तो पता चलदी है। मनुख दा तुच्छपना उदी मूर्खता।

मियां मीर पुस्तों ने पत्थर रखवाया है। दरबार साहब दास कोई गालबन 20-25 दिन हर साल कथा करता है गुरु रामदास जी महाराज के गुरुप्रभ तो लेके दिवाली तक। 40-42 साल विच मेरा कदी नागा नहीं पाया, मैं हर साल उथे ही हुना। साई मियां मीर दी अंश चो 4-5 मुसलमान कश्मीर तो आमदे ने, हर साल मिलते ने, मैनू मिलते ने, और आके कहने मस्किन जी सानू माण है असी उस मंदिर दे पुजारियां ते मत्था टेकन वास्ते आया जिस दी बुनियाद साडे बुजुर्गां ने रखी सी, साई मियां मीर ने रखी सी। माण करदे ने, वो माण करदे ने, हैन मुसलमान दाड़ियां रखी हुई नमाज पढ़ते हैं। और गुरु रामदास जी महाराज के पूर्व के दिन च आते हैं, उन्होंने दिन च आते हैं, अक्टूबर के महीने च वह भी आते हैं, मथा टेकते हैं। तो रूहे जमीन ते सांझी वालता का इस तरह का केंद्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बनाया। आप दी इतिहास तो आप दे बोलों तो शिक्षा की मिलती है। वह महान है मनुख जो सच दी खातर कुर्बानी देवे, उसका धन महान है जो सच वासे धन खर्च करे, अन खर्च करता है। लेकिन वो सब तो सिरमौर है जो सच दी खातर अपनी जान कुर्बान करता है, जान निछावर करता है। तुसी शहादत दिहाड़ा मना रहे हो, कुछ ना कुछ सच दे मार्ग ते कुर्बान करना ही पैंदा, कुर्बान किते बिना कुछ प्राप्त भी नहीं होंदा। और हकीकत है वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, सच दी नहीं आउंदी। दो शब्द बर्दाश्त कर लेना, वक्ती तौर ते ते जित आउंदी है, वक्ती तौर ते झूठी कह कही जित गई। 14 साल दा राम नू बनवास सिंघासन राज तिलक मेरे बच्चे नू भरत नू जित ते हो गई वक्ती तौर ते, 14 साल लई जाना पिया। वक्ती तौर ते ते कंस दी जित है, उन्हें देवकी ते बासदेव नू जेल विच पाया है। 6 बच्चे देवकी दे मार दिते ने उसने, 7वें कृष्ण दा जन्म होया है। राज घराने दा ए बच्चा, फिर गुजर इसनू पालदे ने, जसोदा पाल दिए ग्वालन सी, नंद बाबा पालदा ग्वाला सी, मां बाप ते देवकी ते बासदेव ने, पर नकली मां बाप कोल पलदा पे। राज घराने दा ए बच्चा वड्डा होके गवां चारदा, वक्ती तौर ते ते झूठ दी जित आउंदी। वक्ती तौर ते जे देखिए सिंघासन ते बैठा है सूबा सरहंद, दीवारां दे चिणे जा रहे ने मासूम लाडले, वक्ती तौर ते ते झूठ दी जित आउंदी। ये भी मैरज करदे आ, सिंघासन ते बैठा है वक्त दा शहनशाह, पर दिल्ली दे चांदनी चौंक दे कतल हो रहा है कोई फकीर, किसी दा शीस धड़ तो अलग किया जा रहा। वक्ती तौर ते जित झूठ दी आउंदी है, सच सोली ते टंगे होया ईसा, झूठ सिंघासन ते बैठा है प्रमाण पिया करदा है। वक्ती तौर ते झूठ दी जित आउंदी है, पर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। अज सारे जहान विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की जय जयकार है, पर झूठ दी मजार ते तो कोई दीवा जलाने वाला भी नहीं। साहिब रहमत करन पुरब मनांदे होया सच दे धारनी बनिए, और महान संदेश गुरु अर्जन देव जी का पराई तात हिरदे च नहीं रखने, दूसरे का बुरा भी नहीं मंगना। फिर गुरु अर्जन देव जी का संदेश जेड़े विचार मनुख नूं मनुख तो दूर करदे ने, वो विचार मनुख नूं परमात्मा तो भी दूर कर देणगे। जो मनुख मनुखां दे नेड़े नहीं होना चाहुंदा, वह मनुख परमात्मा दे नेड़े हो ही नहीं सकेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह महान संदेश कुछ बुद्धि अनुसार समय की गति नूं मुख रखदे होया तुहाडे सामने रखे, साहिबां दे मूल सिद्धांतिक नुक्ते साडे हिरदे विच वसन ते पुरब मनाया होया सफल होवे। पुल चुक दी शमा ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ।

0: नानक कहूं नसी जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस बसूले पाछे पावे,
0: एक बस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: तो मुड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाको की जय सद नमस्कार,
1: जाके मन लगा प्रा मीठा,
0: सर्व सुखता हूँ मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व थोक नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कछ बहो शाह हो ले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते से आगे रख है,
0: की आज्ञा मन है मथ है,
1: उसके चौगुण करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सर्वर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया से रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दी सह सो चालन हार,
0: लपट रहो ते अंधे अंधार,
1: घटाऊ से जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है,
0: मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार को तावे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत बिकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: वृत्ति साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपण के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत,
1: जानन हार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता,
0: नानक निजन चरण पराता,
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन है,
1: आप करत नबेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप से अन सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए,
0: तांत नंतर रहा समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जपना।

0: सदायानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदादेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना है
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक
1: और तारै जो अंतर नाम सर्व में देख भगवान निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार नानक ओह अपरस सगल निस्तार
1: मिथ्या नाही रसना परस
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श
1: कर्त्या रूप न देख नेत्र
0: साधक टहल संत संग हेत
1: कर्णन सुने काहू की निंदा
0: सबते जाने आपस को मंदा
1: और प्रसाद विख्या पर हर है
0: मन की वासना मन ते टर
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म कर्त हो वह निह कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: काहू फल की इच्छा नहीं बंचै
0: केवल भगत कीर्तन संग्रचै
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावै
0: नानक हो वैष्णो परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते बिनसै सगला भरम
0: कर पूजै सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवै
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै
1: भगवंत की टहल करै नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावै
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है
0: राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सार रस पीवै
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै
1: हर की कथा हृदय बसावै
0: सो पंडित फिर जोन न आवै
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल
0: सुख मै जाने अस्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान
0: जो वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: साध संग पावै जन कोय
1: कर कृपा अंतर उतार है
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: ज्ञान रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाई धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दाद संतन पाए तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर का परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: जिस दास को सब सोजी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: सब की आज्ञा आत्म हितावै
0: जीवन मुक्त सो कहावै
1: ऐसा हक तैसा उस होग
0: सदा अनंत नहीं वियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी
1: ऐसा मान तैसा अभिमान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जुगत
0: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाव
0: जित जित घर रखे तैसा तन्ना
1: आपे करन करावन जोग
0: भावे सोई पन होग
1: असरियो आप होए अंत तरंग
0: लख न जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक
1: उस्त करे अनेक जन अंत न पारा वार
0: नानक रचना प्रभ रची बहुब दयनक प्रकार अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार व्यवहारी
1: कई कोट भय तीर्थवासी
0: कई कोट मन प्रमय उदासी
1: कई कोट वीर के स्रोते
0: कई कोट तपीसर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान धारे
0: कई कोट कब काव विचारे
1: कई कोट नवतन नाम त्या वहे
0: नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट भय अभिमानी
0: कई कोट अंध अज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर
0: कई कोट अभिग आत्म ने
1: कोर कई कोट पर दर्भ को हिरहे
0: कई कोट पर दुख न करें
1: कई कोट माया श्रम माहे
0: कई कोट पर देश परमा है
1: जित जित लाभ होते तित लगना
0: नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी
0: कई कोट राजे रस भोगी
1: कई कोट पंखी सर्प उपाय
0: कई कोट पात्र ब्रिक निपजाए
1: कई कोट पवन पानी बै संतर
0: कई कोट देश भू मंडल
1: कई कोट शशि असुर नक्षत्र
0: कई कोट देव दानव इंद्र शिर छत्र
1: सगल समग्री अपने सूत धार है
0: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है
1: कई कोट राजस तामस सातक
0: कई कोट वेद प्राण स्मृति शास्त्र
1: कई कोट किए रतन समुंद
0: कई कोट नाना प्रकार जंत
1: कई कोट किए चिर जीवे
0: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे
1: कई कोट जख के निर्पिशाच
0: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा
1: सबे नेरा सब हूं ते दूर
0: नानक आप लिप्त रहा भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी
0: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
0: कई कोट बहुजोनी फिर
1: कई कोट बैठ सही खाहे
0: कई कोट काले तक पाहे।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुर का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: सात संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुर पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: सात संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: सुनत कमाप होत उदहार
0: आप त्रैलोक कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै
1: रखे गोपाल महांत कै माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभ आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभ धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सोहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब से ऊत पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ए फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत तांकी बानी
0: एक नाम मन माही समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सब ते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सब ते ऊच तांकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: Ek Omkar Satgur Prasad.

निरंकार है न लय निरक न जाइए जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना कर पुन हो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करंदी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

दे मंगे से सगुण छोकरे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रब बेकार एक होंदा खाचले था दिना बिकाई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन्हें सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

बौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है आया।

सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान जिंदा तलीका जे मिले तमस्तक लाइए।

दुख दर सुख रोग पे जा सुखाम न होई, तू करता करना में ना ही जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ, जात में जो जो

0: धुवा पूरा तपे का सतगिर धुवा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा सच रहे सबको सच समावे रिग कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैसूर।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरख पठानी अमलकिया
1: चारे वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न तुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाई मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न तुट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना प्यारी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना की बे तग आया पे बते।

सत्र सब अवल लोक इच्छा पाएंगे। मानव इंद्र गजेंद्र ने आदि पौ जाऊन ते लोक राज करेंगे। कोट स्नान गजाज गजान अनेक स्वंबर साज भरेंगे।

तीन अर फेर न देह धरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बाक त्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुद्र ना लोग गयो पर लोग आयो।

करह कहानी अकथ केरी केत द्वारे पाईऐ तन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मन्या पाईऐ हुक्म मन्यो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संता हो कथे व कथ कहानी।

के कर्म कमाया तुद्ध शरीरा जा तू जग मह आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन ने वसिया पूर्व लिखिया पाया। कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नजरी हर निहालिया। एहो वेस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नजरी आया। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी। जिद सुनी मन तन हरिया होवा रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताकि गात कही न जाए। कह नानक अमृत नाम सुनह पवित्र होवा साचा सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन न उन्दवारे प्रगट की दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निद तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहिला साचा घर गावहो गावहो ता सोहिला घर साचा जिथे सदा सच ध्यावहे।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: गुरदेव सिंह बाथौर डेयरी लेके आए ने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नियर साउथ सरी वाइट रॉक क्लोज टू द बॉर्डर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ होम एंड बिजनेस। इन्वेस्ट करो 8 एकर्स अते 100,000 स्क्वायर फीट दी ग्रीन हाउस नर्सरी बिजनेस विच एंड बी योर ओन बॉस। तुहाडी अते तुहाडी फैमिली लई सुनहरा मौका जिवें विच नर्सरी दे नाल नाल 5 बेडरूम हाउस टोटली रीमॉडल विद इनग्राउंड आउटडोर पूल रिटेल शॉप वेयर हाउस प्राइवेट स्पेस अते होर भी बहुत कुछ। आज ही संपर्क करो गुरदेव सिंह बाथ नू एट 604-351-5111।

गुरु रूप सत्संग जी फतेह प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देंदा है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया है, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया है। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनीतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया है, फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना लई क्योंकि आपां धार्मिक मंदिर दे च बैठे हां ते महान धर्म दे सागर धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ियां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हों गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु ते एक वादस करोड़ां च कोई एक कद नारायण जिस दे चेते दे चे, नारायण जिदी समझ दे चे। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है ना। गुरु दी अजमत दा पता, ना गुरु दी महानता दा पता, ना गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ दे च नहीं है। होवेगा परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च होवे पिया, जो मेरी समझ दे च नहीं है। दूसरा जो मेरे चेते दे च नहीं है, जो मेरी सिमृति दे च नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी सिमृति दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या याद करो, चेते करो, संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावां शब्दां नूं, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है, समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी है इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इदा व्यवहार दसदा, इदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने जन्म ते हो गए, ते हुण मैं ए भी अर्ज करा, जन्म बच्चे दी तरह हुंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया है, जिन्हां नूं असी कह सकदे हां बुढ़िया दी तरह जन्म होया है। चीन दे च कहिंदे ने लाउत से जिहड़ा संत होया, कहिंदे ने बुढ़िया दी तरह पैदा होया। ते बुढ़े तो मुराद जन्म तो समझदार सी, जन्म तो ज्ञानी सी,
जन्म तो सूझवान से, जन्म तो दूरदृष्ट से। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ए गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदे ही ब्रह्म गए ने। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर का जन्म होया, शरीर के नाल नाल धर्म का जन्म होया, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, ते गुरु अमरदास जी महाराज का सिंघासन गोविंदवाल साहब की गल है, चढ़न की कोशिश पे करते सन, उपर तखत ते चढ़न की कोशिश पे करते सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ए गुरु नानक का तखत है, ये तीजे गुरु नानक का सिंघासन है, इस ते बैठने की कोशिश ना करो, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांटदे आया बच्चे नूं कह रहे, बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न की कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक का सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते सिदा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नूं लैके बालक गुरु अर्जन देव जी नूं सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया दोहता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, ते धुर दरगाहों बैठे होया, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इते बहुत है, इते जहाज है, इते आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ए नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक कद, कदी कदी जन्म सारिया दे बच्चे दी तरह होंदा, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे कोई बुढ़िया दी तरह पैदा होंदा। चीन दे च कथा है, भई लाद से बुढ़िया दी तरह पैदा होया, भाव जन्म तो गया नहीं हो। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नूं कहिंदे ने कमल तो पैदा।

0: महाराज कह रहे ने अपनी नजर निखाल आपे लेखो लाए जन देहो मती उपदेश जन दर ते सेवक मेनू सेवक नू ए उपदेश दियो विचों भरम जाए साडे अंदरों भटकना भरम खत्म हो जाए जो तुर लिखिया लेख जो परमात्मा ने तुर दरगाह चो लिखिया है महाराज कहिंदे सोई सब कमाए हर एक नू ओ कमाना पैंदा है सब किछ तिस दा वस सब कुछ ओदे खत विच है दूजी नाही जाए होर कोई दूजी थां नहीं उस तो बिना जिहड़ी सानू संभाले ते महाराज कह नानक सुख आनंद भय आत्मक सुख मिलिया आनंद मिलिया पर कदो प्रभ की मन रजाए जदो परमात्मा दी रजा नू ओदे हुक्म नू खिड़े मथे मान लिया। पर इस सलोक दे अर्थ कल बेकर्सफील्ड कल दीवान उथे वे ते मैं जरूर दोबारा इन्हां नू ते संगत च रिपीट करांगा। आओ भाई अमृतधारी होइए जो भाई साहब भाई रजिंदर सिंह भी कह के गए उन्हां पूरी डिटेल नाल आप जी नू दस दिता है ते इथों दे सेवादार इत्थे सिंह सारे बैठे आ जिहड़े उस रसोई विच भी सारे इस मिशन विच सेवा कर रहे आ आपदा बहुत धन्नवाद ते अरदास करियो ए मिशन ए सेवा गुरु रामदास तुहाडा संगतां दा विश्वास ना कदे टुटण दे। आओ जी महापुरखां नू भाई तारू सिंह जी नू याद करदे आ सारे नेत्र बंद करके जो सुनिया है बस इउं समझो कि भाई साहब बैठे आ संगत कोल खलो के सतनाम वाहिगुरु दा जाप कर रही सारे कृपा करो सतनाम वाहे
1: समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेती।

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है? चाया सी कुछ हो गया कुछ, सोग। मंगी सी कुछ और चीज, मिल गई है कुछ और, सोग। जाना सी किसे होर पासे, पहुंच गए किसे होर टिकाने ते, सोग। आवना सी किसे होर ने, आ गया कोई होर, सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हां नहीं आंदा और उस तो विपरीत हो जांदा है तो मन सोग नाल भर जांदा है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है। क्यों? कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है। ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जांदे ने। कबीर कहंदे ने, जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवेया हर करे, जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग देच होके होंदे ने, सोग देच पछतावे होंदे ने, सोग देच साड़े होंदे ने, सोग देच जलन होंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस देच मनुख दी सोचन शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन देच रोग होवन, मन देच सोग होवन तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक देच जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है। ये नरक देच जी रहे है। नरक ही क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक देच जी रहे है। तन देच रोग ने, मन देच सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। अज तक मानसिक सोग नू दूर करन वास्ते जितने मनोरंजन आए ने और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नू मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने। क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है।
चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदित भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरिया दे थले भी सोग हुंदे ने, हसदी हुई जिंदगी दे थले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दे च बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफिलां दे च नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है, इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने, पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते, क्यों ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा
पूरी करन देच, जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है, ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है, बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है। बावें नदी दे कोल घर है, बह रही है, पर नदी नाल उतना ही मतलब है, जो पी ले है पानी ओही हिस्सा बने है, बाकी वग रहे है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है, इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प, जिस जिस इच्छा नू पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां, ओ उस नदी दा जल बन जांदा है, उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी। इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा, क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे, ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी, लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है, ए नदी गहरी कितनी है, इदा पाठ कितना गहरा है, ये चौड़ी कितनी है, ये गहरी कितनी है, तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नू समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है, व्याकुलता ही इसकी गहराई है, बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है, बेचैनी अजे भी नाप तोल देच नहीं आई, कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, इदियां जड़ा नहीं लभदियां, इदी तय नहीं लभदी, व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने, जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है, और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। ये इसनू उल्टा के कह दो, ए बेचैन क्यों है, तृष्णालु है, ए तृष्णालु क्यों है, एदे अंदर संकल्प ने, संकल्प क्यों ने, एदे अंदर इच्छावां ने, इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा तरंग खरी, व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने, जिंदगी नापी जा सकती है, चलो वध तो वध कह लिए 100 साल, तृष्णा नहीं नापी जा सकती, व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है, जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने, ये किन्नी मील लंबी है, इदा पाठ किन्ना चौड़ा है, एक गहरी कितनी है। एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है, ना लंबाई नाप दे चाहती है, ना चौड़ाई नाप दे चाहती है, ना गहराई नाप दे चाहती है, वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, आसा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया। बकायदा फैसला भी कर देता है, बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने, जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है, जिथे इच्छावां ज्यादा ने। और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां होईयां ने, रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं होईयां। कोई एक मनुख भी इतिहास दे च असी बयान नहीं कर सकते, या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां हो गईं, एक भी नहीं होया। गजब दी गल, इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता, और एक दियां भी सारियां इच्छावां ना पूरियां होईयां, ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे, मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने, ते इस तों वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी।
इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी। पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लब ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां हुईयां ने, किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां हुईयां ने। कह दिता सी किसे वक्त बहादुर शाह जफर ने, इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने, इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनू मिली है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाए दार में।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है Live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: दान विसाह दान परोसा दान दाना सर दान नाम दान श्री अमृत सर साहब जी के दर्शन स्नान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मात उची मात पात दे राखे आप वाहे गुरु काल पुरख अपने पंथ दे